0: 야데나 와르쿠슬리슨 타퉁킨디 싱킨제 도고메나 아시샴니 아티다타다든 티친담나 와능튼이 분이 타퉁글리슨달라 산진비 산킨용근야름드 라발라게 야갈랑이야 아크바마스군고고메냐문데 고드시지인 남바수구영 튼든통산비 몬데스 Tena warkum di tukuluz ke kapra sarakuru ke tena ngasih tukuluz ke kapra nene zi Ya, tanda dimu
1: Oh, tena utasi kengkam zang
0: Oh, kengkam zang ya, tani
1: Oh, di cinta go Dikini nga rindu di tiki doko Di cinta go Di tata di jau juan chikko ka Di jashan me tukura ke Tati me zi chati ke chiki ndi ko ka
0: どんねんおてつてちゃんもてずりんどぞこれたがジャブジュングんでまちゃくめとこそこのんだらぜおれやかじみりすなこるがごおかとたがてにんでけんでにんでんがでまけんがやりんどぜこくれあれしゃずれりわてちゃんたごてやこんそもごてあろんかめちゃんもてりんどぞくせられえこんそもが
1: ओने
0: ये कौन सा मुग आरु शाम शाम पे
1: आरु क्या आरु क्या बे आरु क्या बे आरु क्या बे हम वचनसी यो तिजमो
0: ओ
1: ये रे ये रे लोने दिन तेरे तिजमो दिन दो कुछ रे
0: ये रे ये चेरे युक्त लिंगा रो
1: ओने
0: ढूँग दाउ क्या तो ना कब जी मिले सेना को ढूँग लागो
1: ओ तो जी का टूटा सी चीज़ की फिशा लामान जो चुतुंग वाला तगते चेनो दो मेरे चीज के सब जी यदि से मिलने हो आप चाची देव रे
0: ओ या
1: जी चत बुले यान
0: या क्वटिन ची दिमो
1: ओ खतो या
0: या तो कोना बात है ना संदने गाची तेरंग ले चंद को कोडी तारत Nampak sok seni terlalu lagi jaga tangan bi, akapamas gunung gunung yang muda macam ini.